0: ரகசிய போலீஸ் படத்திற்காக எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பாடிய பாடலை கேட்டோம். பாடலுக்கு இசை லக்ஷ்மிகாந்த், பி ஆர் இலால்.
1: உங்கள் விவித் பாரதி தமிழ் 102.3 இன்று காலை 8:30 உங்கள் விருப்பம். இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்தன்கோ.
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
3: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
0: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
0: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी, चीफ मिनिस्टर श्री जोसेफ विजय जी,

0: reforms and institutional transparency. Thank you for being here today, sir. I would also like to welcome the other dignitaries on the dais, Dr. L. Murugan, Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting and Information and Public Relations, Sri Naina Nagendran, Senior Leader, Bharatiya Janata Party, State President and President of Vishwendra Vidya Kendra, Sri Gopalji, senior central and state officials, senior police officers, security personnel, members of our management, members of the press, media and my Vidyalaya family with us today. During a recent interaction with the teachers on Teachers Day, our Honorable Prime Minister emphasized the need for empowering educators, inspiring the youth and looking beyond traditional textbooks. This core belief has also guided our institutions. Today is not merely a celebration of 50 years, it is a celebration of a living vision and mission. 50 years ago, a small seed was planted with a noble dream as the first Hindu Vidyalaya. Today we have grown into a magnificent banyan tree, deeply rooted in Indian culture, ethos, discipline and patriotic fervor, seamlessly blending with modern education, technology and innovation. As we march toward Viksit Bharat at 2047, this national vision becomes a personal responsibility for our students who are the true nation builders. 50 years behind us fill us with pride. 50 years ahead full of purpose. And in the words of Swami Vivekananda, arise, awake, and sleep not till the goal is reached, and which insists on to work tirelessly towards the upliftment of our society, importance on education, character building, and selfless service. This philosophy of Swami Vivekananda is a blend of ancient spiritual wisdom and modern scientific thought, inspiring generation to strive for excellence. I once again, I do not find words to say my thank you in few words, but very with my heart moving gratitude, I once again welcome our Prime Minister. Thank you so much. Swagatam, suswagatam, Jai Hind.
1: एक बीच से विराट वृक्ष बनी कहानी अ शॉर्ट फिल्म ऑन द जर्नी ऑफ हिंदू विद्यालय ऑन एलईडी
2: नमस्ते वेलकम टू जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय
3: विश्व हिंदू विद्या केंद्र अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है 1975 में स्वामी जयेंद्र सरस्वती की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई उद्देश्य भारतीय मूल्यों और धरोहरों के प्रति सम्मान और स्नेह की अटूट परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आज तमिलनाडु में इसकी 15 ब्रांच चेन्नई नागरकोइल कन्याकुमारी रामेश्वरम और शिवकुंदम में संचालित हैं, जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के प्रति विशेष आग्रह रहा है वे तमिल संस्कृति को विश्व की अमूल्य धरोहर मानते हैं जिसे उन्होंने अपने जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा व्यक्त किया है
4: हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा
3: राष्ट्र के प्रति दायित्व समाज के प्रति कर्तव्य और मानवता के प्रति समर्पण इन्हीं मूल्यों को विकसित करता है विश्व हिंदू विद्या केंद्र राष्ट्र निर्माण की दिशा में विश्व हिंदू विद्या केंद्र बच्चों तक किफायती आधुनिक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सभी तक शिक्षा पहुंचाने

0: का संकल्प समाहित है। इसलिए मातृभाषा में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, इसे सुनिश्चित किया गया है।
1: द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस।
2: हमने तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में हायर एजुकेशन का विकल्प भी युवाओं को दिया है।
0: नए संकल्पों, नए लक्ष्यों के साथ जब देश तेज गति से विकास कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों से प्रेरणा लेकर विश्व हिंदू विद्या केंद्र शिक्षित, कुशल और दक्ष युवाओं को भविष्य के कर्णधार के रूप में तैयार कर रहा है। देश सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विश्व हिंदू विद्या केंद्र की ये यात्रा अनवरत जारी है।
3: The three iconic moments which are going to take place in the annals of Hindu Vidyalaya is going to happen right now. With humble pranams, I request our Honorable Prime Minister Ji to unveil the virtual AI lab, ATL lab and the patriotic song Pendrive release. Ji, please.

0: तमिलनाडु के राज्यपाल श्री राजेंद्र हार्लेकर जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, थिरु राजमोहन जी, थिरु नयनान नागेंद्रन जी, डॉक्टर गिरिजा शेषाद्री अम्मा जी, थिरु आर आर गोपाल जी, मेरे युवा साथियों, शिक्षकों और अभिभावकों, एंदु तमिल सहोदर सहोदरी गणे वणक्कम।
1: தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் ராஜேந்திர ஹார்லேக்கர் அவர்களே, டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, ராஜ்மோகன் அவர்களே, நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களே, டாக்டர் கிரிஜா சேஷாத்ரி அவர்களே, ஆர் ஆர் கோபால்ஜி அவர்களே, எனது இளைய நண்பர்களே,